काल पाए ब्रह्मा अवतरा, काल पाए शिव जू अवतरा, काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जुथियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा।

सेवकन को सगुन सुख दियो, सत्रन को पलमो बद कियो, कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, चीटी ते कुंचरिय सथूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संत

अनेक कहे मत एक न मान्यो स्मृत शास्त्र वेद सबे बहु भेद कहे हम एक न जानियो श्री सुपान कृपा तुमरी कर मैं न कहयो सब तोहे बखान्यो दोहरा

आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सहज सेती मन वजियां वाधाइया राग रतन परवार पर

मुंदावणी महला पंजवा थाल विच तिन वस्तु पईओ सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सब सुधारो जे को खावै जे को पुंचे तिसका होए उधारो ए वस्त तजी नह जाई नित नित रख उरतारो तम संसार चरण लग तरिया

0: और एक मथो कम खुआर पोड़ी।
1: नदर कर जाए अपनी ता नदर सतगुर पाया, यह जो पोते जन्म पर म्याता सतगुर सब सुनाया। सतगुर जबरदाता को ने सब सुने लोक सभाया, सतगुर मिले सपाजने विच्चो आप गवाया।

सतगुरु के नाना पाओ बिन सतगुरु के नाना पाया सतगुरु चा प्रख्यन कर प्रकटाक सुनाया सतगुरु मिले सदा मुक्त जिन विचो मोह चुकाया उत्तम विचार जिन सच्चे स्यों चितलाया।

सेव किते संतों के जन सच्चो सच त्याया उन्हीं मंदे पैन रखियो कर शुक्र धर्म कमाया उन्हीं दुनिया तोड़ा बन्ना और पानी थोड़ा खाया तू बख्शिश अगला ने देवे चढ़ाया सवाया बढ़िया ही बड़ा पाया बढ़िया ही बड़ा।

पौड़ी सच्चा सब एक तुझे सच्चो सच वरताया जिस तू देह तिस मिले सतात ने हच कमाया सतगुर मिले सतपान के हृदय सच बसाया मूरख सचन जाना ने मनमुख जन्म गवाया विच दुनिया काहे आया विच दुनिया काहे

स्वयं सेवा प्रवान करनी जी, कीर्तन सेवा कर दिया हो या भुला चुका दी खिमा बख्शनी है जी, महाराज की संगत बख्शन योग बख्श लेना जी। सहुण आप जी दे सन्मुख भाई साहब भाई गुरु सेवक सिंह जी, आप जी ने अज दे पावन पवित्र मुखवाग दी कथा विचार आप जी ने सरवण कराउणगी जी। सो आओ ना पासो आप गुरमत विचार सरवण करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।